0: एक
1: ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुखारू सुख रोग पे आ जासो काम न होई
0: तुम करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होए
1: बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई रखिया रहाओ
0: जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूर रहा
1: तुम सच्चा साहिब सिर्फ चलाओ जिनकी ती सो पार पाया
0: कहो नानक रहते की आपात जो किस करना सो कर रहा
1: सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा कहया सो कर कहया जत बह सर्व संभाले।

0: गावंतु नो मोहनिया मनमोहन स्वर्ग मच प्याले
1: गावंतु नो रतन पाए तेरे अरसर तीर्थ नाले
0: गावंतु नो जोर महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे
1: गावंतु खंड मंडो प्रबंधा कर कर रखे तेरे तारे
0: सही तुदनो गावन गावन जो तुद पावन ते तेरे पाद दृशाले
1: होर किते तुदनो गावन समय चितना आवन नानक क्या विचारे
0: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई
1: हैपी हो सी जाए न जासी रचना जन रचाई
0: रंगी रंगी भरती कर कर जनसी माया जन उपाई
1: कर कर देखे किता अपना ज्योतिष दी वड्याई
0: ज्योतिष पावै सोई कारसी फिर हुक्म न करना जाई
1: सो पासा सहा पासा है नानक रहन जाई
0: आसा महला पहला सुन वड्डा आख्या सब कोई।

0: हटा लोग सत बिनता कोई न किसकी तरिया
1: सिर सिर लिख सपाहे ठाकुर का है मन भाव करिया
0: उड़े उड़ आवे सको साथ पछ है बचरे श्रेया
1: तिन कवन खिलावे कवन चुकावे मन में सरमण करिया
0: सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर काल तल तरिया रागासा महला चौथा सो परख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो परख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा
1: हरा
0: पे ठाकर हर अपे सेवक जी के नानक जंत विचार।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदयावे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय।

मन करके, क्योंकि मन सुत्ता पिया है ना, मन माया के प्रभाव के हेठ सौ जाता है। वैसे तो सारिया इंद्रियां सुतियां हुई हैं,

इस ग्रह भाव की शरीर दे विच एक खाना ऐसा है जिहड़ा जागदा है, पर उहदे वल साडी तवज्जो नहीं हुंदी, ध्यान नहीं हुंदा।

भाई बहादुर सिंह जी की तान बड़ी अच्छी है, तो मैं भी अरदास करता हूं कि सतगुरु मेरे को भी यह तान मरवाओ ताकि मेरा मन भी प्रसन्न हो।

कीर्तन च जागना। शब्द असी पढ़ते पे सा, भिन्नी भिन्नी रह लड़ी है चमकन चमकन तारे, संगत चो हुक्म होया सी मैनू कि यह शब्द पढ़ना है अज। मैं क्या धन्यवाद जी मेरे, जरूर पढ़ांगे। तो बिचों बिचों विचार बनते जा रहे हैं, जिस तरह गुरु सच्चे पातशाह जी प्रेर रहे ने सानू, भिन्नी भिन्नी रह लड़ी है चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे जिहड़े ने ओह सदा ही जागते, केवल रात नूं नहीं जागते, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिहड़ी पंक्ति लिखते पए ने, भिन्नी रहनड़ी है चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, इत्थे केवल ते केवल रात दा जिक्र नहीं कीता। सतगुरु जी कहिंदे राम प्यारे सदा जागे, वह दिन भी जागते ने, वह सौंदे भी वाह वाह करते ने, ते सवेरे भी वाह वाह करते। उन्हां दे अंदर वह तार जिहड़ी है वह प्रेम की इश्क की लगी रहिंदी है। वाहिगुरु ने नाल जिहदा करी प्रेम बन गया ना, वह फिर कोई उसनूं हटा नहीं सकता, भावें लोग जिन्ना मर्जी बखौल कर। भगत कहने तेरी भगत ना छोड़ो, भावें लोग हसे, मैं जिन्ना मर्जी मजाक करना करो, मैं तुहाडे ते हसदा, तुसी मेरे ते हसदे, गल ते कोई तुसी मेरे जो अवस्था प्रेम रूप अवस्था भावना वाली अवस्था ते हसदे हो, मैं तुहाडी मूर्खता ते हसदा, इन्ना ही फर्क, हसदा मैं भी तुहाडे ते। तो तेरी भगत ना छोड़ो, भावें लोग हसे, चरण कमल मेरे हीर है पछे। तो सौंदे भी वाह वाह उचरे, उठते भी वाह वाह करे, वाह वाह करते ने, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। उन्होंने अंदर ये तार जिहड़ी झनकार जिहड़ी है ये चलती रहती है, केवल ते केवल रात नूं नहीं, क्योंकि गुरु ने अगे पंक्ति च लिखिया अपनी गल नूं आपे खंडन कर रहे हैं।

नवा वस्त्र लिया के सुहा बोर हो गया मन, आदमी परफ्यूम वरतद खुशबू लादा कुछ चेर बाद कहना नहीं आउटडेटेड हो गई नवी नवी लिया। पर गुरु कहते ने जिन्हों का प्यार बन जाता है, मच्छी मच्छी की एग्जाम्पल दिती भाई गुरुदास जी ने लिखा है कि सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच, भगति श्रवण करो। सलल सलल कहते हैं पानी नो, सलल निवास जैसे मीन मीन कहते मच्छी

जप पूरन होई आसा। बिलावल महला पंजवा। ताती वावन लगई पार भ्रम सरनाई। चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औख दिया एका लिव लाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा पई प्रभ पहे सहाई। सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तून है छुट है निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा। मन मह चितवो चितवनी उद्यम करो उठनीत। हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत।

शिव रिहो सृजनहारो। तुम गाहो मेरे निर्भो का सोहिला, हवारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े संभाले।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,
Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

रे नानक पावो सुकने रे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस्व तर। अनग माया रंग तिखना बुझावे, हर का नाम जपत आगावे। जे मार्गे जात अकेला तय, हर नाम संग होत सुहिला। ऐसा नामन सदा त्याय, नानक गुरमुख परमगत पाइय। छूटत नहीं गोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही। अनग बिगन जाय संगारे, हर का नाम तत्काल उधार। अनग जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हम मैड़ा मन कबू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साधक संग। जे मार के गने जाहे ना गोसा, हर का नाम उहां संग तोसा।

अपन संग पर बराते तुमरी उस तुमते हुए नानक अवर न जान सोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया सा संग दुर्मत मलहिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जासुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जिह कटवसै हर नाम सलोक निर्गुनी यार ए आनिया सो प्रभ सदा समाल जिन किया तिस चीत राख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी गमन मूल ते गमन दृष्टानी जंतु साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध बाहर जोबन भोजन सुख सूद बिरध भया ऊपर साग सैन मुख प्याऊ बैठ खाओ दैन ए निर्गुण गुण कशु ना बुझै बख्श लिह तो नानक सिजै जे प्रसाद धारु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसाद बसा दीने हस्त पाम करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मुड़ अंध व्यापे नान काढ़ लियो प्रव्यापे आदंत जो रखन हार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नमृत भावै तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे तागो अंधा जान दूरे जाकी टहल पावे दरगे महंत से बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा ये भुलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्या कौटी संग रचे सा छोड़ झूठ संग मचै जो छटना सो अस्तर कर माने जो होमन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका सलाम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तोहे घर द प्रीत पसम संग हो।

अष्टपदी दस वस्तुले पाचे पावे एक बस्तकान भी खोट गवावे एक पीना दे दस भी हर ले दो मूडा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा तागो की जय साधन सकारा जाके मन लागा बना मीठा सर्व सुखता हूँ मन भुठा जजन बना हुक्म बनाया सर्व थोक नानक दिन पाया गंध शापनी दे रास खात पीत वरते अनंत उलास अपनी अमान कछ बाहुर शाली अज्ञानी मन रोज करे अपनी प्रतीता भी खोवे बाहुर उसका विश्वास न हो वह जिसकी बस आगह राखे प्रभु की आज्ञा मान है मत है उसने चौगुन कराए निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरबर होवत जान अनेत बिरखी छाया सुरंग लाभ ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हाल लपट रहे हो तय अंध अंधार बटाऊ से जो लावे ने दागु हाथ न आवे गेहे मन हर के नाम की प्री सुखदाई

मिथ्या रथसी आशु वस्त्र मिथ्या रंग संग माया बेखस्ता मिथ्या त्रोमो अभिमान मिथ्या पशु पर कर्तुकमान अस्थिर भगत साधु की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या पर दर्भ को हिरे।

नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सत जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ब्रहाथ।

प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सौ कहावे तैसा हर्ग तैसा शोक सदा अनंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा मृत तैसी भी खाटी।

सनोक उस्तत करे अनेक जन अंतना बारा बार नानक रचना प्रभ रची बाबे अनक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भाई तीर्थवासी कई कोट बान भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तबीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब का बिचारे कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते कांतना बावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभेगात्म ने कोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख ना करहे कई कोट माया आश्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पाथर बृख न बजाए कई कोट पवन बाणी वह संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र शेर शतर सगल समग्री अपने सूत धारे नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे

इसके याद कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हो या पे आप सोए, जो कुछ किन्नो सपने रंग सबते दूर सब का संग, बुझा देखे करे विवेक या पे अनेक मरे ना मिनसे आवे ना जाए नानक सदी रे समाए। आप उपदेश समझे आप उपदेश समझे आप आपे रचया सबके साथ, आप किन्नो अपने विस्तार सब काश उसका वो करने हार, उसे पिन कहा हो किश हो एथान तरंतर एका सोए अपने चलताप करने हार, कौत करे रंग आपार मन मया मन अपने माहे नानक मन कह ना जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गिने बखयानी सच सच सच सब कीना, कोट मते गिने बिरले चीना भला भला भला, तेरा रूपा सुंदरिया बार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी।

अन्नावचार तर प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरा जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मनोहे विकास ज्यो महोद्यान में मार्ग पाव दे साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो दूर नानक की रोचा पूर मन मूर काहे बिर लाइये प्रभु लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभु देवन हार वर त्याग तू तसे चितार जो कश करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरा संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे

स्वप्रसन्नष्टपदे अविनाशी ब्रह्म मे राघवानुकीतो प्रीत्या तस्य परायणाय सर्व निरंतर एकः सोऽये आपे विनय आपे दाना गैर गंभीर गीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शांत सा तेरे की चरणी पाऊ नानक मन एहन राव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो घरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अंधरु मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिए घर ताके राज मैं राजोग मैं जोगी था मैं तबिसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया नानक तिस प्रगा गने अंत ना पाया जाकी लीला की मत ना है सकल देव हारे बगाहे पिता का जन्म के जाने भूत सकल ब्रोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम ध्यान से ते गुण में जागो परमाए जन्म मरे फिर आवा जाए ऊच नीच तिसके असां जैसा जनावे तैसा नानक जा नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे एक रंग नाना भेद किन्नो विस्तार प्रभु नासी एक अंकार नाना चलत करे खिन माए पूर पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे ना जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के धारे सगरे जंद नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम के धारे स्मृत भेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आगास पाताल

सर्व कल्याण सुख निधनाम बुढ़ जात भाई विश्राम सकल दुखा उदनास नानक नाम जबो गंतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्र अंतर यही स्वाव नेत्रो बेग दर सुखोय मन बिकसे सात चरण तोये।

अनाथनाथ गोविंद गोपाल सर्वकृत अहंकर्त प्रतपाल आत्म कारण कर्तार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोय पनीत भगत पाए लावे मन ही तम निर्गुण यार नीच अजान नानु तुमरी सरगुण पुरख भगवान सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निम हर के गुण गाय अनगराज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत बलिशु करणी शोभा तन मंदिर दसे पूर्ण गुरमंत्र

राष्ट्रपति जब कार्य गचना दृष्टिता पापन तब कहते हो तब धारी अपन सुन समाता बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर्षो कहो तब हर्षो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तमो कांक्षो परमापन खेला भरतीजा नान कर निहार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बांध मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभा तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धर तब कवन ने डर कवन कत डर अपन जलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब गौन छुटे गुण बंधन बाधे अपने आप आपिया चर्जा नानक अपन रूपा पियो परजा जय निर्मल पुरख पुरख पातो था तैबिन मैल कहो क्या तो था जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदी तय छाल छिद्र लगत कौ कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावत किसे भूकम द्रवताव करण ग्रामन करने नान करते गा नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब गमन माए बाप मित्र सुत पाए जय सर्वकला पे परवीन तय भेद कदेव कहा कहो चीन जब अपने आप रुताए तो सगन अब सगन कहा विचार जय बनु जाप नाम नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए जेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय शाला।

विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारा पेका विस्तार जात सभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम दे भिन्न ही कुछ होया अपन सो सब जगत परोए जागो प्रभु जी आप जाय सतनाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सौल सृष्ट का जेता जी यंत्र सब था के हा दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तुझ कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो

जियो गुरु गोविंद अमृत रस पियो चित चित बहो नारायण एके गुरु जागे रंग अने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमरे सिमरे नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम सलोक साध के

नाम गोविंद भगत के मन में सराम कोट अपराध सा संग मिटे संत कृपाते जमते छुटे जाके मस्त कर्म रबाए साध सर नानक ते आए।

न सुजई जे तिस गुण कोय करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत तबले आकाश, सुनया दीप लो अपाताल, सुनया पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विंगास, सुनया दुख पाप का नास। सुनया ईसर ब्रह्मा इंद, सुनया मुख साला हनुमंद।

एक वार। जो तुध पहावै साई परिकार, तू सदा सलामत निंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत।

निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिरपार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाव अखरी लिखन बोलन बान अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे ते सरना

कर कर करना लिख लै जाहु। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवह जाहो। तीर्थ तप दया दत दान, जेको पावे तिलका मान। सुनया मनया मन कीता भाओ, अंतरगा तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही, कोए बिन गुण कीते भगत न होए।

ना जानिए समुंद साहा सुल्तान गृह सेती माल तहन कीड़ी तुलना होवनी जेत समन होना भी

अमोल गुण अमोल व्यापार, अमोल व्यापारी है अमोल पंडहर, अमोल आव है अमोल लै जाहे, अमोल पाए अमोला समाहे, अमोल धर्म अमोल दीवान, अमोल तुल अमोल प्रवान,

के अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पावे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काख हो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते भरमे काड़त घड़िये रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तुह उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नयंत।

मन माहे तिथे भगत बसह के लो करहे आनंद सचा मन सोए साध खंड बसे निहंकार कर कर वेखे नजर निहाल।

प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं निनामे कामे पजांग प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दान है चतर चक्र जान चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले

है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खाल खंडस है,

0: जाए, हो में किथोप दे किस संज में जाए, हो में हुक्मे पाए कृत फिराए, हो में दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे, कृपा करे जे अपनी ताकुर का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो।
1: कित संज में दुख जाए, पौड़ी सेव कृती सुन तो कही,
0: जिनी सचो सच तिहाया, ओनी मंदे पैर न रखे और कर सुकृत धर्म कमाया, ओनी दुनी तो ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शी सी अगला नित्य।

सोचे अगे रखियो कोई न पुठियो जाए सोचा हुए कि जगे आ लगा परसलो कोथी जाई सटिया किसे लगा दो आन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लू भजवा पाया किरतता हुआ पाक पवित्र पापी से उतन गड्या थोका पइया तित जित।

0: वक्त कवन कवन खेत कवन वार
1: कवन जितो आकार
0: वेल न पाया पंडती जे हो वै लेख प्राण
1: वक्त न पाया काटिया जे लिखन लेख प्राण
0: खेत वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई
1: जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई
0: केव कर आखा केव सलाही क्यों अरनी केव जाना
1: नानक आखन सब को आखे एक तू एक सियाणा।

0: अमल अमल परवान
1: अमल बख्शीस अमल निशान
0: अमल कर्म अमल फरमान
1: अमल अमल आख्या न जाए
0: आख आख रहे निवलाए
1: आखे वेद पाठ प्राण
0: आखे पढ़े करे विख्यान
1: आखे बरमे आख है।

0: अंतर वर्ग है, असर्ग है,
1: नील है, नाद है, जे है, जाद है,
0: अजन्म है, अपर्ण है, भूत है, अपर्ण है,
1: गंज है, भंज है, चूज है, चंज है,
0: अनीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है,
1: सूज है, काल है, जाल है,
0: अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है,
1: अलीक है, नसीक है, लंब है, संब है,
0: अगम है, जम है, पूत है, अछूत है,
1: लोग है, सोख है, कर्म है, परम है,
0: अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है,
1: समान है, निदान है, अनेक है, फरेक है, भुजंग प्रयाशन, नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने,
0: नमो देव देवे, अभेद्य।

0: प्रशांत प्रसाद अमृत कर में अमृत धर में
1: अखल जोगे चल भोगे
0: चल राजे अटल साजे सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता
1: सर्वंग पाणे सर्वंग माणे
0: सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं
1: सर्वंग भुक्ता सर्वंग युक्ता
0: सर्वंग देवं सर्वंग वेवं
1: सर्वंग काले सर्वंग पाले
0: वाल शांत प्रसाद।

0: पुत्रेण पुत्रेण सत्रेण मित्रेण
1: दत्तेन मातेन जातेन पातेन
0: निस्वार्थं श्रीहं मित्तो मीहं
1: सदानं प्रभाहै अजहै अजाहै
0: भगवती शांततो है प्रसाद के जाहर जहूर है क्या जल जूर है
1: मैं सो सलाम है समसुर कलाम है
0: कि साहिब दिमाग है कि उसने चिराग है
1: सर्व
0: गमन है मेसल रवन है
1: समस्त अजीज है
0: परम परम ईस है समस्त अदीस है
1: मेसल अपेख है
0: जमीन उल जमा है।

0: स्वर है, परमेश्वर है,
1: कृता कृता अमृता अमृत है,
0: अजिबा कृत है, अमृता अमृत है,
1: निर्णायक है, कलकायक है,
0: विश्वपुर है, करुणालया है,
1: नायक है, सब पायक है,
0: भजन है, अर्गंजन है,
1: जपतापन है, जब जापन है,
0: कलंकृत है, सर्वाकृत है,
1: कर्ता कर है, हरता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है,
1: आत्म बस है, जस के जस है।

0: स्वरूपे सदांग संगे वंदे वाहे जी का
1: श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के
2: माते मतंग जड़े जर संग नूप तंग सुरंग सवारे
3: कोट तरंग करंग से गुगट बाण के।

0: सब भाग जी तो समापत मस्त मस्त अर्जुन दोरा
1: भाग जी का खासा भाग जी की हरे पाए गए जब दे तुम्हें दर्द को हर बहनी आने और राम रही प्राण प्राण ने कहा मत देखना माने और सुनना

0: कह नानक मन प्यारे तू सदा सच माले
1: अगम गोचरा तेरा अंत न पाया
0: अंतो न पाया गिना तेरा अपना आप तू जाने
1: जी जन सब के तेरा क्या को आख माने
0: आखे तो वेखे सब तू है जिन जगत उपाया
1: कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया
0: नर मन जाने अमृत खोज दे सो अमृत करते पाया
1: पाया अमृत कर कृपा की नी सच्चा मन बसाया
0: जी जन सब तेरे पाए एक वेख

0: जेतु चलाए तिव चले जिन्ना मार्ग पावे
1: करण कृपा जिन नाम लाए
2: हर हर रूप
1: सदा दे आहे
0: जिसनु कथा सुनाए अपनी सही गुरुद्वारे सु पावे
2: हे नानक सच्चे साहेब जो पावे तिवे चलाए
0: ए उस वेला शब्दों

0: जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो इतनी जन्म जुआ हारिया
1: इतना बड़ा रोग लगा मन मनो विसारिया
0: विदा में ना हूँ तम सो सुने ना ही फिरे जो बिता
1: नानक जिन सचित।

0: गुरु के चरण हृदय ते आए अंतरात्मा संभाले
1: आप छठ सदा रहे परणय कर्म जब न जाने कोई
0: ते नाम सुनो संतोष सक्षम मग होए
1: जे को गुरु ते वे मुख होए बिन सतगुरु मुक्त न पावे
0: पावे मुख न होठे कोई पुछो विवेक किया जाए
1: अनेक जूनी पर में आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए
0: फिर मुख पाए लाग जानी सतगुरु शब्द सुनाए
1: कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए
0: आवो सिख सतगुरु के प्यारो आवो सच्ची वाणी
1: वाणी ता गाओ गुरु केरी वाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी
0: बाणी तक कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी
1: कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख बखानी सिर्फ दिन का हृदय माया बोलन पे वाणी
0: सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जाओ
0: शब्द रतन जित मन लागे आयो
1: सब से दी मन मिले आ सच्चा लाया पाओ
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनो देव जाए
1: कहा नाल शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ
0: तो सकत आप पाए कह करता आपे हुकुम बताए
1: हुकुम बताए आपे खाए गर्मुख किसा बजाए
0: चुड़ा बंधन हो गए मुक्त शब्द मन मिसाए
1: गर्मुख जिसनो आप करे सो हो वे कुछ से उले बुलाए
0: कह नानक आप करता आपे हुकुम बजाए
1: समृत शास्त्र मन भाव विचार जो तत्ता सार ना जानी
0: तत्ता ना जानी गुरु बाजो तत्ता सार ना जानी
1: तेहि गुणी संसार
0: माता के उदर में पटपाल करे सोकी उम्र
1: विसारी
0: उसनो क्यों पोए सकी जिसने आपने